0: Yeah. पर अलाइज साइंसेज न्यूनत को करा रहा अगर सभी प्रकार के उपचार की बात संभव था
1: प्राध्यापक डॉक्टर डेला सिंह जोशी डॉक्टर चुम्बाया पुन
2: फिजिशियन तथा पेट कलेज रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास अधिकारी डॉक्टर शंकर बराल
1: हाड़ जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर यज्ञमान साक्य उप प्राध्यापक डॉक्टर प्रवीण थापा र हाड़ जोड़नी नशा रोग विशेषज्ञ तथा आर्थोस्कोपी सर्जन उप प्राध्यापक डॉक्टर सुभाष गुरु
3: रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तेज बहादुर गुरु कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषि सेठ
0: न्यूरोलॉजिस्ट तथा मेदोला प्रत्यारोपण सर्जन सह प्राध्यापक डॉक्टर प्रकाश छेत्री डॉक्टर जीजुराज श्रेष्ठ
3: नाकान घाटी तथा थायराइड सर्जन सह प्राध्यापक डॉक्टर विकास गुरु थाना विज्ञान गिनेकोलॉजी डॉक्टर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अस्मिता वाग्लिंग
0: रेडियोलॉजिस्ट प्राध्यापक डॉक्टर मनीष किरण श्रेष्ठ डॉक्टर सुमिरन श्रेष्ठ
3: एंटीबायोलॉजिस्ट डॉक्टर भूपेन्द्र कुमार तुलाकर प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन उप प्राध्यापक डॉक्टर पीयूष गिरी
0: एनेस्थेसियोलॉजिस्ट उप प्राध्यापक डॉक्टर विशाल गुरुंग डॉक्टर सुष्मिता गुरुंग
3: जनरल सर्जन प्राध्यापक डॉक्टर नरेंद्र विक्रम गुरु सह प्राध्यापक डॉक्टर देवेंद्र श्रेष्ठ
0: फिजिशियन डॉक्टर अनुमल पौडी मनोचिकित्सक डॉक्टर मनकाजी थापा नगर ICU, double and laparoscopy surgery seva, post-op seva, physiotherapy, endoscopy, colonoscopy, echo, ENT, culture, EFT, urotherapy, dialysis seva va, 24 ghanta urology seva sathe, sabai visheshajna doctor haru dwara seva pradan garieko jankari garaudachha.
4: 24 ghanta pathology seva uplabdha chha. Vistrit jankari ka lagi, Diagnostic Hospital and Allied Sciences Valley, Pokhara Neuro, 0186-5192-162-5192-163.